अंतर्जामी सच्चे पातशाह जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी हो, आप जी के पावन स्थान सतखंड दरबार दियाँ तरी भरते हुए, आप जी कृपा बाणी का सत्कार करते हुए, बेअंत गुरमुखा प्यारिया वालों शुभ भेट माया हाजिर हुई है। सच्चे पातशाह नाम दान सिखे दान की बख्शिश करनी, गुरसिखे जीवन बख्शो नाम दे आरोग्य, समूह सत्कार दियाँ मनोकामनाएं पूर्ण करने, नाम बाणी नाल प्यार चुनाद हृदय प्रवान करनी, यात्रा सफली करनी।

0: के बचे शरण जो दोहरा उठ गए सबा मले छिके कर कूड़ा पासार डंका बाजे मने काले कलंक अवतार सतर चक्र प्रवर्ती तंत्र चक्र भुगते सोया मौ सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणास दयालंग स्वरूपे सदा संगे आप भंग दिवते
1: एक गुप्त विष्णु प्राप्त जनान गुरु गोविंद सिंह जी
0: श्री काल गुरु के सहाय।

0: दल दे उपर वार करना करदे है। इधरों गुरु का पंथ खालसा भी उन्हां दे सूरमिआं नूं गोले चला करके गोलियां चला करके प्रहार करना करदा है उन्हां उपर।
1: नित प्रत युद्ध होत बहु तेरा,
0: कहिंदे दिन प्रति दिन बहुत ज्यादा गह गचदा युद्ध जिहड़ा है ओह वधदा जाणा कीता है।
1: हलक हलक हट फेरा,
0: कहिंदे आ दोवें पासिआं दे सूरमे हल्ले कर करके ते आपस दे विच भिड़दे हन, अपने जौहर विखाउंदे है, अपना पराक्रम

0: कोई मोर्चा बहुता यड़ना करे ना फिर तीर तुसी चलाया करो ते वेख करके ते कहिंदे तीर बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं ते कई बार चलाउण दी भी लोड़ नहीं पैंदी। ओनू चिले दे उपर तनुख बाण दे विच तंदी ते चाड़ के चिले दे उपर रख के तंदी केवल खिचदे ही है जे पछाण नूं ओहदे नाल ही मोर्चे फतेह हुंदे जांदे है। ऐसी धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे तीर दी करामात है। ऐसी असीम शक्ति है ते साडे साडे वड्डे भाग है जिहड़ा सानू गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी दे तीर दे दर्शन होना करदे इस स्थान ते। गज के आखो सतनाम। कैसा महाराज जी दा गम्मी तीर है वेख करके भुखां लथ जांदियां। सो ये सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी दे अगम्मी तीर हन। सो कहिंदे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने महाराज जी दा वचन सरवण कीता चेते करना कीता ते तीर एक खपरे जो कढ़िया क्योंकि किले दी कंध टुट नहीं रही सी ये मोर्चा वेर जाना कीता सी। सो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने पुत्रां दे दानी जी दा बख्शिश कीता होया तीर सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी दा ओ कढ़ना कीता है।
1: हुकम दयो दल को होए हिला।
0: और एंच ओ कहिंदे कि किले दे वल नूं कर करके ना ओदा मुंह तीर दा ते अजे छड्या नहीं अजे तंदी नूं कन्न तक खिचिया ही है केवल ते अपने फौजां नूं गुरु पंथ खालसे नूं हुकम दे दिता कि हुण हल्ला करना करो।
1: सुन चहां दिशा शोर बड मेला।
0: ये गल सुन करके ते चार छपेरे गुरु के पंथ खालसे ने जकारे ला दिते है। उधरों इन्हां ने भी बड़ा अंदरों रौला पा दिता।
1: तहाए तहाए गढ़ को लग गए।
0: ते कहिंदे गुरु का पंथ खालसा तहाए तहाए नाम है भज भज के कहिंदे भज भज के उस किले की कंध ने लागे जा करके हो गए हन। कहिंदे है कि बड़ी छेती दे नाल जिहड़े सूरमे घोरियां ते पलाकियां मार के सवार हो गए। अरे ते घोड़ियां नूं नाल लैके जा करके किले दे अंदर प्रवेश हो गए हन। कहिंदे किले की कंध टुटी ते अंदर प्रवेश होए ते फिर कहिंदे है कि कृपाना दे नाल तेगां जिहड़ियां ने म्याना दे विचों सर सर करके कढ के ते बड़ा जंग मचाया गुरु पंथ खालसे ने उस किले दे अंदर।
1: अच्छा मुछ कर अंग कनेरे।
0: अच्छा मुछ मैंने कि अंगा नूं कई टोटियां दे विच कोई भरवां वार करदे है ते जिथे वार हुंदा है उस अंग नूं गुरु के पंथ खालसे गुरु के योधे जिहड़े है ना उह लाह करके रख दिंदे है। जे हथ ते वार लग गया ते हथ वड्या गया जे पैर ते लग गया पैर वड्या गया जे पट ते लग गया ते पट वड्या गया जे गले ते लग गया ते फिर सिर वड्या गया। गुरु क्यों प्यारियो कोई भी वार गुरु पंथ खालसे दा खाली नहीं जांदा जेड़ा वार करदे है अंग लाई आउंदे इन्हां तुरकड़िया दे।
1: इथरी लोथ पोथ गन हे।
0: ते कहिंदे एक वारी उत्थे लोथ पोथ ना हो गई भाव के लोथां दे ढेर लग गए बड़े मरे हुए शरीर तो तुरकां दे उत्थे इकट्ठे हो गए लोथां ते लोथां चढ़ गईयां।
1: एक बार ही सकल विनाशे।
0: एक वरां दे विच ही ऐसा गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे बख्शिश कीते हुए तीर नूं अजे तंदी दे विच रख के खिचिया ही है ते ऐसा जोर पिया है गुरु के पंथ खालसे दा तुरकां दे उपर कहिंदे एक वार दे विच ही ना कहरी हल्ला करके ते सारे तुरकां नूं मार देना कीता।
1: हाय मैदान कीन जहो पासे।
0: ते कहिंदे है कि फिर इस किले नूं ना तोड़ करके इतने जोश दे विच गुरु का पंथ खालसा उस समय आया कि उस किले नूं ढा करके ना फिर रड़ा मैदान कर दिता। सारा किला गुरु पंथ खालसे ने फिर उस चकना चूर कर दिता मिट्टी दे विच मला दिता।
1: डौर नगर मह दल भर गयो।
0: ते फिर उस डौरे नगर दे विच गुरु का पंथ खालसा दाखल होया।
1: जो देखियो तूरन कट दयो।
0: जेड़ा दे भाई हाथ जोड़दा सी गुरु का पंथ खालसा बड़ा बख्शिंद है जो सरना वै तिस कंठ लावे ओ बिरद स्वामी संधा। जेड़ा ते हाथ जोड़ दिंदा सी ओनू ते बख्श देंदे सन जेड़ा अड़ जांदा सी ओ झड़ जांदा सी ओदे उपर कृपान झाड़ करके ओनू झाड़ देना करदे सन भाव के मार दिया करदे सन खत्म कर दिया करदे सन।
1: मुगल पठान नहिया दा शोरा।
0: कहिंदे इसे तरीके दे नाल फरमान करना करदे है के लूट्यो बरे सदन मैं जाई मुगल पठान ना सैयद छोरा। कहिंदे ना ते कोई मुगल छड्या ना कोई पठान छड्या।

मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तलवडियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वडियाईया, तुद विण सिद्धि कनै न पाईया, करम मिलै नाही ठाक रहाईया, आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तों देहे तसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा, आसा महला पहला, आखां जीवां विसरै मर जाओ, आखणी औखा साचा नाओ,

मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जिन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपतास है मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए दृग जीवै दृग जीवास। जिन हर जिन सतगुर संगत पाई तिन धर्मस्तक लखिया लखास। धन धन सत संग।

सोई थी सी जो तू देह सोई हों पाए रहा सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनु कृपा करह तन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनु तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाए।

बरंत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्भुज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा हुए बैठा काहूं सिमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण घाता जे इस दुजताओ शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक महर हो रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई

दुख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दलो उबारी सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अवदुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बा

स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं देखते गोपते जनान गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरख सहाय दरबार तेरे दरबारा सतगुरु सैन नारा।

सत्संग जी गुरु साहब जी का लंगर तैयार है, प्रसादा छक कर गुरु महाराज दी आंख से प्राप्त करो।

पौड़ी साहब हरदयाल कृपा करे ता साकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुकम बनाए सी हुकम ने हो प्रमाण ता कसम का मेल पैसे कसम भावे सो करे मन।